था ही उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। दिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl। आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त।

केसरिया पीस की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिये हरन के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पीस की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन एक बार फिर से बस पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है।

भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा भजन होगा अनूप जलोटा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, राम से बड़ा राम का नाम। सुंदर भजन जो काफी दिनों के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में

सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बसुरुगाम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले एक भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको हम ले चलते हैं पंडित जयशंकर जी की ओर और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS केसरी सुंदर सा भजन हरि हरन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी हरिओम शरण जी की आवाज में।

0: भगवान की जय।
1: हरिओम, शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

बजरंग बांग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को शुक्रिया धन्यवाद। गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में गाना जो अब की बार हम आपकी सेवा में पेश करने वाले हैं
1: रेडियो SBS 24 आवर्स विद द बेस्ट म्यूजिक।

रेडियो SBS के जरिए ये खूबसूरत मैशअप आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मंगलवार का दिन 21 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते

0: रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हमराज उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Uit de film Kya Kehna. Alka Yagnik en Sonu Nigam की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

अगर प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है, सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन 21 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325 65 65 66। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0322 66 66 LFM। इसी तार के नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। रेडियो SBS का एप पर भी आप तार कर सकते हैं। रेडियो SBS का एप की

रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं। सभी को वेलकम। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम यहां से आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म दहलीज, महेंद्र कपूर एंड भूपेंद्र सिंह प्रोग्राम में।

एक बेबी सॉन्ग गीत, बड़ी ही खूबसूरत गाना, भूपेंद्र सिंह एंड लेट महेंद्र कपूर जी की आवाज में पेश की गई दहलीज फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रोजाना की तरह आज भी हजारों हजारों सुनने वालों पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं, हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में सभी को वेलकम। जहां जहां पर भी आप सभी रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, हमारी एक सुनने वालों है जो रेडियो SBS का प्रोग्राम भी इंडिया भारत देश अलीगढ़ में बस सुनते हैं, और वो है धर्मेंद्र चौहान भी हमारा प्रोग्राम इंडिया भारत देश में अलीगढ़ में बस सुनते हैं। और कल दोपहर के वक्त हमारा रेडियो SBS का ऐप पर गुजारिश किया एक गाना लता जी की आवाज में, लेकिन उस समय हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गए थे, तो उनसे हम रेडियो SBS का ऐप के जरिए खबर किया कि आज के प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में आपकी गीत हम जरूर पेश करेंगे। तो लीजिए इंडिया भारत देश अलीगढ़ का रहने वाला धर्मेंद्र चौहान, आपकी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। दिलीप कुमार का फिल्म का नाम आन, 1952 का फिल्म, 1952 तक का फिल्म, लता जी की आवाज में बस गाना पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म आन का गीत भी इसकी गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। इंडिया भारत देश अलीगढ़ का रहने वाला धर्मेंद्र चौहान की गुजारिश पर ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। आपकी बार तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना 1960 का फिल्म उसने कहा था फिल्म का नाम तलत महमूद एंड लता जी की आवाज में ये गाना।

महमूद और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई उसने कहा था, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक काम काज के लिए आपकी फरमाइश हुआ, इश्तिहारी जरूरी खबरें रेक्लाम हुआ, हर एक काम काज सस्ती दामों में बस रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। आपकी फरमाइश है 5 यूरो पर फरमाइश, जन्मदिन सालगिरह विवाह शादी या मुंडन संस्कार की फरमाइश हुआ 5 यूरो पर फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। नसरी फरमाइश सस्ती दामों में, लेकिन आपकी तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो है ये भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर इन्फॉर्मेशन आप लीजिए मेल द्वारा, तार द्वारा या तो रेडियो SBS का ऐप के जरिए। अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं, तार भी कर सकते हैं और हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे मरीचो समाचार बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले तुमसा नहीं देखा, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा, आए है दूर से मोहम्मद रफी एंड आशा।

तलत जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म आरजू की ओर, मोहम्मद रफी की आवाज में।

पुरानी फिल्म आरजू, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल फोन की जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने तक आप सुन सकते हैं और वो भी रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए रेडियो SBS.nl की जरिए। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द नेम ऑफ द मूवी।

रेडियो SBS की सरिया खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और आप सभी सुनने वालों को स्पेशल खबर किया जा रहा है देनहाग शहर के अंदर में मुस्कुराता दुकान के पास में मुस्कुराता फैशन दुकान के पास रक्षाबंधन आपको दिया जा रहा है सस्ती दामों में 1 यूरो पर स्टुक। रक्षाबंधन यहां पर दाम रखा गया है एक रक्षाबंधन के लिए 1 यूरो 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है। और स्पेशल आपको खबर किया जा रहा है जब भी आप तार करेंगे तो यहाँ पर अपना बस टैलिंग भी आप दे सकते हैं और आपकी घर तक भी भेजा जाता है। मुस्कुराता कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 देनहाग शहर के अंदर में है। यहाँ पर रक्षाबंधन 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है। तमाम इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है muskurata.nl पर। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। दो दिलों की दास्ता फिल्म का नाम, दो दिलों की दास्ता उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, लता मंगेशकर 1965 का फिल्म, 1965 का फिल्म का नाम दो दिल।

दो डील उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार एक गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, फिल्म बारिश उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। चितलकर की आवाज में, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।

के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खूबसूरत गाना भी आपने सुना बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। फिल्म का नाम था बारिश, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है सुबह 10:30 बजे में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर की ओर जबकि हम देखते हैं तो धूप दिखाई देता है।

किशोर कुमार, दिल दौलत दुनिया फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले फिल्म संगम की ओर। मुकेश एन लता जी की आवाज में एक खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, मुकेश और लता जी की आवाज में।

पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 6 मिनट ओवर हाफ हाफ स्टूडियो टाइम हो चुका है। मोहम्मद रफी एंड

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म हमराही, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सरिये जो अभी आपने सुना। वेबसाइट होता है रेडियो SBS का radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर जोड़ तोड़ से ऐप कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। फिल्म हसीन

गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए मोहम्मद रफी की आवाज में, हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश किए गए। टेम्सड्रेव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और फिल्म का नाम होगा हम किसी से कम नहीं। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश किए गए हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में। सुन वालो 12 मिनट बाकी है 11 बजे में रेडियो वेस्ट में इसके जरिए पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है किशोर कुमार फ्रॉम द मूवी ऊंचे लोग Sung by the man with the evergreen voice, Kishore Kumar.

KG Bus program bij PC Game. Sudvalu chale program mein ek aakhri purani film ka geet pesh kiya ja raha hai. Aaj ki purani film mein sangeeto ka program mein kal budhwar hai, kal subah 9 baje se phir purani film mein sangeeto ka program zarur hai aur zarur sunte hi rehna. Chale Aisha Bhusle M Kishor Kumar ki awaaz mein ye gana pesh kiya ja raha hai. और इस गाने के बाद खबरें होगा प्रोग्राम में, खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं.

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आइडो फिल्म बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान प्रोग्राम में।

सभी सिनेवालिटी से बांधे। चलिए फिल्म द बॉडी की ओर। श्रेया घोषाल की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

जी आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

आवास में अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्रेख आमस्टरडाम से स्ट्रेटवेग नंबर 97 97 से लड़कन जेन, आशा, राजेश, सीता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार 17 तारीख जुलाई, फ्राइडे 3 जुलाई, सुबह 9 के वक्त, स्मॉर्गन्स 3:30, 86 साल, 86 साल की आयु में, 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना। उत्रेख आमस्टरडाम से स्ट्रेटवेग 97 97 का रहने वाला सूर्य प्रसाद भगवान सिंह, जिन्हें लोग सूरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है बॉस एंड डाउन में। अर्थी के आखिरी दर्शन करने के लिए आउटफार्ट सेंट्रम नोर्दरफेल्ट स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में फंडाग डेंसदाग 21 जुलाई फन 7:30 to 8:30। अर्थी डोंदरदाग 23 जुलाई स्मिदाग्स 2:15 क्रेमेटोरियम नोर्दरफेल्ट स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जी लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06 48 49 28 29 29, 06 48 49 28 29 29। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में सुख सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

0: Voor alle informatie is Radio SBS 24 uur bereikbaar op telefoon 030 265 65 60.
1: सुनवालो रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है। 12 बजकर प्रोग्राम में 10 मिनट वाइटेड हो चुका है 3 मिनट ओवर 12। सभी को अनहेल खुद मेरा शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है और आपको खबर किया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे मृत्यु समाचार एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बज प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर। मंगलवार का दिन 21 तारीख जुलाई का प्रोग्राम।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना प्रोग्राम में अभी बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म साथी, उसी फिल्म क्या कहिए, फिल्म सीता और गीता, उसी फिल्म का ये गाना नई आवाज में नई संगीत में आपके लिए जो पेश किया जा रहा है, फिल्म सीता और गीता, उसी फिल्म का ये सॉन्ग।

रेडियो SBS के जरिए मुकेश का खास ओरिजिनल गाया हुआ गीत रानी रूपमती, उसी फिल्म का गाना नई आवाज में, नई संगीत में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले आपके बार ये गाना की ओर, एक और रोमांटिक सॉन्ग प्रोग्राम में, आज की इस दोपहर का प्रोग्राम में।

रेडियो वेस में इसकी सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक और खूबसूरत बॉलीवुड लव मैशअप बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

प्लेयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एंड शान की आवाज में द फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है तेरे बिना

0: पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गए किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना पेश किया गया।

आज उड़ता हुआ एक पंछी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार

आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है, दिल ही तो है फिल्म का नाम, दिल ही तो है फिल्म का नाम, मुकेश जी की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आइडो फिल्म दिल ही तो है गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में। किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश की गई है।

गाना जो पेश की गए किशोर एन लता जी की आवाज में, अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गए है।

रेडियो SBS की सर किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Sunnevallo Thames Drive 237, शहर उत्तरा से ये प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमणाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमणाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस गजल दूर सोनू निगम एंड अलका याचिनी के क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दागे गजल दूर प्रतिभा सिंह खैर मंगदे।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसीन है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्रेख आमस्टरडाम से स्ट्रैटवेग नंबर 97 से लड़कन जेन, आशा, राजेश, सीता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार 17 तारीख जुलाई, फ्राइडे 3 जुली सुबह सरहे 9 के वक्त स्मॉर्गन्स 3:30 86 साल 86 साल की आयु में 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना। उत्रेख आमस्टरडाम से स्ट्रैटवेग 97 का रहने वाला सूरजू प्रसाद भगवान सिंह जिन्हें लोग सूरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है बॉस एंड डाउन में। अर्थी के आखिरी दर्शन करने के लिए आउटफार्ट सेंट्रम नोर्दरफेल्ट स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में फंदाग डेंसदाग 21 जुली फन 7:30 टोट 8:30। अर्थी डोंदरदाग 23 जुली स्मिदाग्स 2:15 क्रेमेटोरियम नोर्दरफेल्ट स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जी लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06-48-49-28-29, 06-48-49-28-29। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर 1 से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है प्यार द रीमेक्स।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आरती बर्मन, लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वास्तव फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कम खजानदार शान एन रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस अर्ध फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड अर्ध फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।